0: Even come into Amritsar. The two Sikhs entered the walls of the temple, and when they arrived near the bridge, they tied their horses to a tree. Then they walked across the bridge. They entered the Golden Temple. Masarangar was seated, smoking a big hookah pipe. He was drunk, for he had drunk a lot of wine. His eyes were half closed, and he was watching dancing girls and listening to their music. The two Sikhs could not believe it. And so Bhai Sukha Singh stood watch at the door, and Bhai Mehtab Singh fell on Masarangar like lightning from the sky. Raising his sword high, he cut off Masa's head and threw it in a bag. Masa's men were very surprised. They ran around, not knowing what to do. They were very afraid.
1: What happened? Oh.
0: Before they could do anything, Bhai Mithab Singh and Bhai Sukha Singh ran out of the temple. They ran down the bridge. They jumped on their horses and galloped away like the wind. They rode across the countryside. Faster and faster they ran, bringing back the head of the enemy. Finally, they arrived near the village. They jumped off their horses. Bhai Mehtab Singh took the Mughal's head and he stuck it on top of his lance. Then he and his friend walked their horses into the village. Everyone saw them and was very joyful and surprised to see them alive. They saw the head of a man on top of the lance and realized that Bhai Mehtab Singh had succeeded in his mission. The Akhand part was not even yet finished.
2: Waheguru ka khalsa, Waheguru ki fateh, said Bhai Mehtab Singh. This is the way that those who dishonor the house of Guru die.
0: Later on, Bhai Mehtab Singh was made prisoner by the Mughals. They tortured him and killed him, breaking every bone of his body on the wheel. But he calmly and joyfully continued to chant Waheguru, Waheguru, Waheguru, refusing to cry, refusing to beg, refusing to betray his guru to save his life. And this is the way that true Sikhs of the Guru, the true Khalsa, live and die. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh.
3: You are listening to SeekNet Radio.
4: ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ।
5: ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
6: ਵਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏ।
4: ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
6: ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
4: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
7: ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।
4: ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ।
7: गुरु अर्जन आप ही शांति दी मूरत हन।
4: भाई जेठा ते भाई पीराना उत्थे ही सन। जदो गुरु अर्जन देव जी ने अपने आप नू सच दी खातर कुर्बान कीता सी, ओ उना विरलियां विच्चों सन जिन्हां ने अपनी अखी गुरु अर्जन देव जी नू असह ते अकह कष्ट भोगदे वेख्या सी। ओ उना दे लई देखना भी बहुत औखा सी अते उना तो चरिया नहीं सी जा रहा।
1: ए दुष्ट इंसान जो गुरु जी नू इन्नी तशद्दत दे रहा है, मैं उनू खत्म कर सकदा हाँ। लाहौर भी तो इसते ही राज विच है, क्यों ना मैं पूरे शहर का ही नाश कर दिया, कि एहो सही नहीं है पिराने?
8: हाँ बिल्कुल, मैं दिल्ली दी राजधानी नू भी समाप्त कर देंगा। उथो दी ही हुकूमत तो इसनू शह मिलती है।
4: पर गुरु अर्जन देव जी ए नहीं चाहते सन कि वह किसी भी प्रकार का दखल देन, अते उन्होंने चुप करके शांत रहने लई आख्या। यह झरना बहुत औखा सी, पर उन्होंने गुरु के शब्द ते अमल किया अते अपने प्यारे गुरु के नाल खड़े रहे जदों वो बेअंत कष्टा तो गुजर रहे सन। वो गुरु जी के नाल अंतले समय तक सन। जदों वो मुड़ अमृतसर नूं आए तां उन्होंने सारी वार्ता गुरु जी दे बेटे नूं दसी।
8: गुरु अर्जन देव जी इस फानी संसार नूं छड़ के ज्योति जोत समा गए हन। ओ प्यारे शहजादे हरगोविंद जी, तुसी ही अगले गुरु हो।
1: गुरु अर्जन देव जी दे वचन सी कि तुसी एक योद्धे बनना है, फौज तैयार करनी है अते उन्हां दा न्याय करना है जिन्ना ने घोर पाप कमाया है।
9: श्री गुरु हरगोबिंद ने अपने पिता दे दित्ते हुक्म नूं पालन करन दा वादा कीता अते अखीर वो आप भी बादशाह दा सामना करन लाहौर गए।
4: जान तो पहला उन्होंने सब नूं आदेश दित्ता सी कि उन्हां दे वड्डे जिवें कि उन्हां दे माता जी, माता गंगा जी अते बाबा बुड्ढा जी दा कीहा ही मनना है। इस दे उपरांत गुरु जी आप ही किले विच बंदी बना ले गए, भावें यह उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ही होण दिता सी, जिवें कि तुसी बंदी छोड़ दी साखी तो जानते हो।
10: भाई जेठा
4: ते भाई पिराना दोबारा रोह विच आ गए।
1: जहांगीर सम्राट ने यह सोच भी किवें लिया कि वह गुरु जी नू बंदी बना लवेगा?
11: असी यह गुरु दा अपमान बिल्कुल नहीं होण दे सकते, हुण बहुत हो गया।
1: साडे कोल इन्नी शक्ति है कि असी इस सम्राट नू आप ही सजा दे सकते हाँ।
8: पर असी जानते हाँ कि गुरु साहिब साडी शक्ति नू इस्तेमाल करन दी मनाही ही करनगे।
4: उस समय अमृतसर तो बाबा बुड्ढा जी गुरु जी दे माता जी पासो एक फरमान लेके आए।
12: अपनी शक्ति दे अधीन तुसी जो भी कर सकते हो करो, अते मेरे पुत्तर नू जल्दी तो जल्दी वापस अमृतसर पहुंचा दियो।
8: जे माता जी कहंदे हन कि असी अपनी शक्ति नाल कुछ भी कर सकते हां, ते
1: तां चलो असी भी फिर शेर बन के दिखाउंदे हां। चलो मेरे नाल।
8: जे तुहानू यह ठीक लगदा है ते मैं तैयार हां।
1: असी उसका खात्मा कर देंगे, गुरु जी जल्द तो जल्द कैद विच्चों छुटने चाहिदे हन।
4: भाई जेठे ने अपने नाल पिराने नूं ले लिया, दोनों ने भयानक शेर दा रूप धारण कर लिया।
6: हुण ए है ना ओ गल जिस बारे मैं कह रहा हां।
4: अगे बादशाह दिल्ली विच एक विशाल किले विच रह रहा सी, सो उस रात वो शेर दे रूप विच तब्दील हो गए। वो दो भयानक शेर शाही सोन वाले कमरे विच दाखिल हो गए।
13: नहीं, मेरा अंत आ गया है।
4: बादशाह मदद ले कुरलाया अते गुरु जी ने उसनु शेरा तो बचा लिया। अगले दिन उन्होंने फिर शेर का रूप धारण कर लिया अते बादशाह नु डराया।
13: शेर असली हन, पर मेरे पलंग दे हेठा किवें आ जांदे हन, अते फिर इकदम गायब भी किवें हो जांदे हन।
4: उस दे मंत्रियां ने बिल्कुल इस गल दा विश्वास ना कीता कि ये असली शेर सन। उन्हां नूं लग्या कि ये बीमार है, तां उन्हां ने बहुत वैद्यां हकीमां नूं सदिया ताकि वो ठीक हो जाए, पर कोई मदद ना हुई। तां भाई जेठा वैद्य दा पेश बनाया अते आप जाके सम्राट नूं मिले।
13: कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकिया, मेरे रोग नूं कोई ना दस सकिया, देखते हैं जे तुसी दस सको।
1: असल विच तुसी बीमार नहीं हो, मैं जानदा हां तुहाडे नाल की हो रहा है। रात वेले दो शेर आउंदे हन ते तुहाडे दोवें पासे आके बैठ जांदे हन।
13: तुहानू इस बारे कीवें पता लग्या?
1: मैं एक बहुत वड्डे गुरु दा शागिर्द हां, मैनू बहुत कुछ पता है। मैनू ए भी पता है जदों तुसी परेशानी विच हुंदे हो तां तुहानू गुरु हर गोबिंद साहिब बचा लेंदे हन, नहीं तो शेरा ने हुण तक तुहानू मार देना सी।
13: वाह, तुहानू ते सच दा पता है, मैं ऐसा की करां जो मेरी मौत ना आए।
1: तुसी गुरु हरगोबिंद साहिब नू बहुत चिंता अपने कैद विच रखिया है, जितना तुसी पहला तय कीता सी उस तो किते वध समा हो गया है। तुसी गुरु नू झूठ बोलिया है, तां करके ही शेर तुहाडी जान दे दुश्मन बने हुए हन। तुहानू उन्हां नू जल्द तो जल्द रिहा कर देना चाहिदा है। तुहानू गुरु पास जाके उन्हां अगे सीस निवा के मुआफी दी फरियाद करनी चाहिए है। जेकर तुसी उन्हां नू अज ही रिहा ना कीता तां शेरां ने भी अज रात ही तुहाडा अंत कर देना है।
13: अज रात? नहीं नहीं, ओए ग्वालियर दे किले दे सिपाहियां नू कह दियो कि गुरु हरगोबिंद जी नू इसे वक्त रिहा कीता जाए।
4: भाई जेठा जी दी ए तरकीब कम आई।
13: हे अल्लाह, मैं आस करता हां कि गुरु मैनू बख्श देंगे, मैं उन्हां दी कृपा लई कुछ भी करन नू तैयार हां।
4: भाई जेठा गुरु साहिब दे दर्शन करन दोबारा किले च चले गए।
1: गुरु जी साडे कोल एक खुशखबरी है।
4: पर गुरु जी जानदे सन कि की हो रहा है अते भाई जेठा तो कुछ निराश लग रहे सन।
1: गुरु जी की सब ठीक है?
4: गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उन्हां नूं एक प्याला दिता ते हुक्म कीता, भाई जेठा जा उठ, इस प्याले विच नदी तो पानी भर के लिया।
1: हां जी मेरे गुरु जी।
4: नदी कोई ज्यादा दूर नहीं सी, वो किले तो निकले नदी दे लागे गए, प्याला भरिया वापस आ गए ते गुरु साहिब नूं पेश कीता। पीण दी था गुरु साहिब ने उन्हूं कहा, हुण जाओ ते पानी दोबारा नदी विच पा दिओ। वो हैरान हो गए।
1: वापस मतलब? अच्छा जी, सत बचन मेरे गुरु।
4: उन्हें गुरु दा हुकम मन्या अते वापस नदी दे कंडे चले गए। सारा पानी प्याले विचो नदी विच पा दिता अते दोबारा अपने गुरु कोल चले गए। ते गुरु जी ने गो पुछया, जदों तुसी प्याला पहला भरिया सी तां कि तुहानू नदी दे आकार विच कोई फर्क लग्या सी? कि नदी दा आकार घट गया सी?
1: नदी विच ते बहुत पानी है, नहीं मैनू ते कोई फर्क महसूस नहीं होया।
4: तां गुरु जी ने पुछया, जदों तुसी ओ प्याला दोबारा नदी विच पा दिता तां कि तुहानू आकार विच वट्टी लगी?
1: प्याले दा ते नदी नाल कोई तोल ही नहीं, उस नाल कोई फर्क नहीं पिया।
4: गुरु साहिब जी ने दसिया, जो गुरु घर की शक्ति है वो सदा ही नदी वांग वगदी रहती है। गुरु की नदी हमेशा ही भरी रहती है।
14: ना वह घटाई जा सकती है ना वधाई जा सकती है।
4: सब नूं यह सोझी आउण लगी कि गुरु साहिब जी ने उन्हां नूं यह काम करन लई क्यों किया सी। ए अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करन लई दित्ता गया एक उदाहरण सी। गुरु जी अगे सिक्ख्या देंदे रहे,
14: तुहानूं अपने नेक कम्मां करके अते सेवा करके एक छोटे जिहे प्याले की प्राप्ति हुई है, पर उस छोटी जी कमाई नाल तुसी ये सोचा कि तुसी एक वड्डा कार्य करोगे।
4: तां गुरु साहिब ने सारिआं नूं याद करवाया कि वह अपने आप नूं रिहा कराउण लई बहुत सारे कोतक रचा सकते सन।
14: जो शक्ति तुहाडे कोल हुणे है गुरु घर तो ही प्राप्त हुई है। कि इस घर विच तुहाडे च नहीं शक्ति नहीं है? अपने दिल नूं यह सवाल करो।
1: हाँ जी मेरे गुरु जी, मेरे को शेर विच तब्दील होने की शक्ति है, ते मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं दिल्ली शहर नूं भी खत्म कर सकता हाँ। पर तुसी तुहाडे कोल मेरे नालों किते वध बेअंत शक्तियां हन, अते तुसी इस सब का कदे भी अंत कर सकते सी जिवें तुहानूं पौंदा।
14: गुरु जी ने कहा, तुहानूं सदा ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करन लई हुकम लेना चाहिदा है, अते असी तुहानूं इह हुकम नहीं दिता है। तां करके हुण तुहानूं गुरु घर दे हुकम तो बाहर जाण दा नतीजा भोगना पैणा है।
1: मैं समझ गया हाँ, मैं हर प्रकार दा नतीजा भोगण लई तैयार हाँ।
4: सारिआं नूं हुण गुरु साहिब जी दे संदेश दा एहसास हो गया।
1: मैं भी बस ये कहना चाहुंदा हाँ कि अजिहा करन लई मैनूं हुकम होया सी। माता गंगा जी ने बाबा बुढ़ा जी राही यह हुक्म कल्या सी कि असी अपनी शक्ति नाल जो भी कर सकते हाँ वो करिए, जिस नाल आप जी जल्दी रिहा हो सको। बाबा जी ने साड़ी इस तरकीब की हिमायत की सी, फिर भी आप जी नू सब दा भला मालूम है अते मैं तुहाड़ी आग्या दा पूर्ण तौर ते पालन करांगा।
4: गुरु जी ने अकाल पुरख की आग्या नू मन्या ते आख्या,
14: असी की कर सकते हाँ, असी माता जी अते बाबा जी दे वचन नहीं मोड़ सकते, तां तुहानू कोई सज़ा नहीं होवेगी, पर सानू यह जे काम नहीं करने चाहिए।
4: तां गुरु साहिब जी ने सबनू संता दे मार्ग बारे समझाया।
14: सब तो वड्डी शक्ति यह है कि शक्ति होंदे हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करना। ना जरिया जाण वाले नू असी चरना सीखना है। भगत उन्हां दे चरणा की धूल लोचते हैं जो सदा अकाल पुरख के पाने विच रहिंदा है।
1: हाँ जी मेरे गुरु जी, मैं आप जी दे जीवन दे मार्ग की पालना करांगा।
4: तां सी इलाही शक्ति बारे की सिख्या?
6: कि जेकर साडे कोल कोई ठोस वजह भी है तां भी सानू होरनां नू डरावना नहीं चाहिदा।
14: शाबाश, बहुत खूब। और की सिख्या?
6: कि साड़ी शक्ति पहले जिन्नी है अते गुरु दी शक्ति नदी जिन्नी।
14: शाबाश, साड़े विच्चों कई शरीरक तौर ते दूजे तो ताकतवर हन अते कोई दिमागी तौर ते ताकतवर है। कईआं कोल इलाही शक्तियां भी हन जो दूजिया कोल नहीं हैं। सानू सदा याद रखना चाहिदा है कि साडियां जो भी शक्तियां हैं वो सब बस एक प्याले जिनियां हैं, एक पूरे समंदर दे सामने। ये साडे वस विच नहीं है कि उस शक्ति नू काबू करिए। उस गुरु दी शक्ति दी अपनी ही मेहर है अते अपना ही बहाव है। यह साडे लई है कि असी उस दी पालना करिए अते गुरु दे हुकम विच रहिए।
4: गुरु जी कहिंदे हन, अचर चरे ता सिद्ध होई, सिद्धी ते बुद्ध पाई। जेकर इंसान ना खाते जाण वाले नू खा लवे तद ओह पूर्ण पुरुष ते बंदा है अते पूर्णता दे राहीं स्याणप प्राप्त कर लैंदा है।